0: तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
1: रगों में तोड़ते फिरने के हम नहीं कायल। बहुत